गार्ड, रेजिमेंट चल चलो, प्रेजेंट। ऑर्डर गार्ड, सोल्जर। सारी बे कंपनी।

Angola Susa, Nepali Jazos, Nepali Jazona for the good life. Biscuits, Juna, Korashmila. Husibabe Dunga, Yoko Hekonta Jazodo, Sarkaran Doklen Hapasa, Igdua Niti, Tagano, Rat in Unisiano, Dariatano, Topis of Kerbeono, Ale Yokomofe Dunga, Lipa Bolo, So Tudine, Bispaki, Wogu, Search and Rescue Team Yato, say, permission bila ale we alipa athon ta kathyo bale aja suno news bo durga dhaible na bulina on a hydro power is surung ta duni wo surunge sai swim of ta jimsa sai mal of ta aajana thata bisama ma thai ko sai online khabar wo samachar sai bigudula tho sai tos ko he bam lagu jula sare le ano surung duni kari parib cha sosi bi apamnu ta on sai duni lana sungu dhai ko anuman du thake go ma mosu go ma sai pyaung ya gon thena wona mosu tara nyatsa तो खुशी बाले सरकार हो दो कुछ तो देख को गया भेज कर सही जाए भेज उनको मदद सारे भी ये कोई संख्या प्रभावित जुलो और ये तो इसको है दुर्गम थाना जुलो नुआ कोटी है बचा गाड़ी वहाँ था सही अनो जा जुलो और ये अनो हाइड्रोलिन और मोनोटली क्या फोटो तो रसुआ यू खाले खासा अनो पर्याप्त रूप में उदार या अनो मफे सुंगो रखा सही वो है सुंगो जुलो और ये आयु खाले खासा सही आतो पहचान मजबूत पीने को जोन सीम आदो वजाइ ये ना थोड़ा गाड़ी वो ये ना गाड़ी आया उसे तैयारी जुआ सोंगो जुलो अलमेर है ना आठना है सब व्यवस्था पनी आगे दो साल अबे करीब करीब हजार जना थी ना मनुता मोरपी मखलाबो मनुते तो तेतो ना चीके चीके दे सरकारी के वास सरकारी अस्पताल वाइज निजी अस्पत त्यानो पूर्वाधार तो मधु उल्लेखनों तो उसको ऐसा कर सोंग चुला अलेह थोड़ी ले यु कोई को निवाद ला निवाद संस्था ने सोना ले रखा बिसाय ने सोने दिया सा निवाद ये तो बोला विशेष ना सही वो खुशी बाव वो गु दी दस कते निशे प्रत्येक दी आठ बजे चुनी गया ना बीचों दो अलेह अन्ना सही रसुआ नुआ कोट धादिंग विशेष ना प्रभावित जिला जुलो तो क्लियर पो प्रभावित सही नुआ कोट और रसुआ जुलो मलाली रसुआ वो नुआ कोटिया अन्ना सी केंद्र समिति अलेह जिला समिति नगर समिति बेदुनी वे कॉपी सोना सही अन्ना था गु अपडेट सत्य हुए ना बीचों दो अलेह आता को वो गु जानकारी को था सही नरेंद्र प्रधान वे को सही केंद्र सदस्य विदुर नगर पालिका सुना दी बटारे अलेह अन्ना सही वे को सही मई थली कैंप पहुंचा मैं 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से खबर कोई ची वे को था तो को उली प्रभावित जो गुम मधु वे को तो सुलेली का लागू था जरा तर वे को लम बियादी को जानकारी अनुसार से अन्ना निवादी तो बिया जिला या कुछ आदेक से सोलिता जोशी अलग जिला है जो गीता श्रेष्ठ पुण्यलाल डंगोल वे कॉपी सही परिवार सहित सरिता जोशी या कौसा मैं भी गीता श्रेष्ठ पुण्यलाल डंगोल परिवार सहित आनो बेपता लाने सुनो दूर का से वे कलम करा दी गुजरो अलग अति है चुए रस्वे ना ये कोई को निवाद तो है जाना चाहे थमा या फुपिंता राहत भी गुजरे अलग इस जैसे उनको खाना वो गुजरा अलग छुट्टी से कन मगा आज ये समग्र निवाद तो बस समग्र सुनी का ले चुम पीसा ना सब उस तरह का किन्हीं माला दही को था सही मिंगा सोमबा आई तो बाना सब सुनी गुज जाजुला अमाल के सुंदर जुया अवाने अलग थोड़ा थोड़ा ची कार्यक्रम जाजुम ले सारे तीन निश्चय सुरुजी थोड़ा ना सुजी खा गेजी खा बोला ये पास का सीधे तरह अकुन प्रारंभिक सालफल कथा सही आवेगु सनीबा आधो घटना जोगु जमाजाई चिन सनु दे अलग चिन सनु वा चिन निनु बिदा लगा सही था शोक रैली है ना बस तो पुरानी सी शांति बाटी का तो गोस्वोक रैली है ना अली शांति बाटी का ऐसे ही मच्छा क्यों गु लगा से प्रारंभिक सफल जो गुजरा अली सुनो नमो एगु खाली ची सांसे ही सरोकार कीने गु श्रद्धांजलि दिस है गु जासो लगा से धागो जुला वो बाहेक ना मेरे गु जासो तो ना पकान्दो उन्हें सिपने लगे थे तर